0: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा।
1: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ MBBS MD इन्टरनल मेडिसिन DM कार्डियोलोजी।
2: डाक्टर आउने दिन श्रावण 9 गते शनिबार समय बिहान 10 बजेदेखि
1: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
0: उपचार हुने समस्याहरू
1: हृदयघात, हार्ट अट्याक, उच्च रक्तचाप, धड्कन अनियमितता, मुटुमा दुखाइ वा जलन, स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या, कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या, हात खुट्टाहरू झमझमाउने, मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप, एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप, सुगर, थाइराइड, दम, निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान,
0: साथै मुटुको इको, रगत जाँच र ECG पनि गरिन्छ। थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 98216 1400 र 98486 39785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा OPD सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ECG सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ENT सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैङ्गिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
5: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
4: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका?
5: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
4: अब त म ढुक्क।
6: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
5: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
7: तहरा राजा जी का दिलुआ टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलुआ टूट जाई।
8: उफ, बल्ल घर भेटा निखौराइदा
9: मुस्कान पिछाई घरक भित्र हामी नित्य निवराइ छौँ कि कहाँ खेतमा सखारणका लागि मिनी लैजाइ पर्ना रह
8: आइदा जान्छे बादर
9: ल्या मै मिनी बनाएको धैरिए तु लैजा दिएस् न।
8: हुन्छ दाइ। ओहो हेरो यहाँ भित्तामा त ढिलाको बा माथिले तब दिनु पर्यो कि कहाँ हाम तब दिउँ। अय्या दाई सपका डरल
9: खै खै कहाँ काटु छै
8: यहाँ दाई यी दाई नाजमा डरल।
9: अरे लेऊ हाली क्यु बाटो म छै मुस्कानबाट सपका डरलस लेऊ हाली।
10: काबिल काकी काबिल
9: हेर न राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कल
10: ना क्या काकी ओ मुस्कान न्या क्या का शान्त होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न स्वास्थ्य न सुटाई हलचल निका राखना
9: बुठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो
10: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा घर गहना निकब जैना मेकअप फाँसर बना दी ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटलक हाथ भर नहीं चलाखना
9: बुठा भैया सबको कटलक ठाउ आंजर पांजर चिर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोर निकलना हो कि
10: नाई नाई काकी सबको कटलक घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई तो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
9: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबको कटलक ठाम और लगा दी उठा ना नानू
10: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
9: बुझनु नानू बुझनु
10: बिना काकी रामेश्वर मोटरसाइकिल लेखा आई कही झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी भेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाई दादा आई अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी भेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती का तुम्हें दाता हम कही का हेरा पुरल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुलल हमार गाउँ से त मिर्सेहक स्वास्थ्य संस्थामा को सर्पदंश उपचार कैजिना रहेछ हो उहाँ लैदै परन मुस्कान हुन
9: राकेश नानु मोटरसाइकल लेख रामेश नानु आ गेल
10: लेव लेव लेव काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केन्द्र में पुगाई सीख जाये कल से मुस्कान हना बताई सीख जाये
8: बैठा बैठा याद करी सपवा दसल से मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र में जाकर जान बचाई वहां कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
11: मोटरसाइकिल स्थापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपोहना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के का समझन साफ फिर काट से था संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने दिखाई सकले से हुकर सपो विषाहर अलग निरलग पहचान के का सही उपचार कर सहयोग उठा
8: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो दस लाख मने यहाँ बताई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सक दी था सपो दस लाख मने यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा डाली यहीले ऊ मने एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी क्लाक ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसा पत्ता लगाए क्लाक आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से देखा
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटा का आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौला अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 9 गते 16 गते 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बा का सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौकन थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सरसफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 0 26
2: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानिक 9 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी की राम राम। अपने उकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सम्रपात्र नेपाली पात्र बफिसुन्टी हलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से आज हरि शयनी एकादशी तुलसी लगाइना दिन कर्णाली नदी कटान तरभन्दा भटकटी टीकापुरके दक्षिणी क्षेत्र जोखिममा भदरी नगरपालिकामा विद्यालय करेसाबारी प्रबन्धन सम्बन्धी अभिमुखीकरण वास्के मौसम एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा के सम्भावना खबर। प्रत्येक वर्ष असार शुक्ल एकादशी के दिन घर घर में तुलसी बिरुवा असार के 4 महीनासम करना विशेष पूजा अर्चना से शुरू हुई बा। 1 महीना से आग ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन में घर के तुलसी मोठ में धरलक दल के बिरुवा मोठ में असार सनातन वैदिक परम्परा के अनुसार तुलसी विष्णु के प्रतीक के रूप में मान आसे कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन में तुलसी के विशेष पूजा हुई। असार शुक्ल एकादशी के कार्तिक शुक्ल एकादशी में 4 महीना भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करना हुई हुईलक। आज के दिन हरिशयन एकादशी हुईलक। धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति के पूर्व सदस्य प्रधानाध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई बोटेलोट भगवान विष्णु शयन करना हुई 4 महीना चतुमार सफे कहीग्रीवा 1 वर्ष चौबीस एकादशी पर्दा तेज सक्कु जान एकादशी में पलाहार केलकर के व्रत बैठ नई सेक नंबर चतुमास के 4 महीनासम 8 एकादशी में व्रत कर्थ कामकाज में सक्रिय हुई पर्नाव 4 महीनासम फे फलाहार कर नई सेक लगे हरि शयनी एकादशी हो। हरिबुधनी एकादशी के दिन फलाहार करके व्रत बैठना कर दैत। हरि शयनी एकादशी के अवसर में आज बिहान से राजधानी के बुढ़ा नीलकंठ पटा के 4 नारायण लगाये देशभर नारायण एवं विष्णु मंदिर में भक्तजन के भेट लग जाए। एकादशी के दिन विशेष कई के चावल में सेवन लग परिकार ने खेना रोटी ढिडो लगाये फलाहार करना कर दैत। वैज्ञानिक रूप में फे बढ़ी ऑक्सीजन पैना प्रमाणित हुईलक। तुलसी ध्यादोसिन रोग केलाक औषधि के रूप में समेत प्रयोग कर दैत। तुलसी के मठ हुईलक ठामा रोग सरना विषालु प्रकार के कीटाणु नैना विश्वास समेत कर दैत। वासुदोष हुईलक स्थान में तुलसी के मठ हरना सकारात्मक फल प्राप्त हुईना मान्यता समेत बा। तुलसी हुलक ठाम शुद्ध हावा बहना तथा समेत वैज्ञानिक रूप में पुष्टि हुई बा। 4 महीनासम विधिपूर्वक पूजा आराधना करना तुलसी हर कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात हरिबुधनी एकादशी के दिन दामोदर संग भोज कर देना वैदिक विधि बा। तुलसी और दामोदर को विधिपूर्वक भोज पाछ अग्नि स्थापना विधि मसे चतुर्मास व्रत के उद्यापन केला हवन समेत कर दाए। भैरवनाथ मंदिर से उत्तर ओहर कर्णाली लदिया के पूर्व ओहर पश्चिम ओहर सोचके करीब 500 मीटर तरभन्दा भटकाइगिबा। रानी जमरा कुलेरा सिंचाई आयोजना मसे बनेलक। तारजाली बगासेकलबा तारजाली बगाइल पासा तारजाली से ऊपर थुपरलक भारी ढुंगा वोल्ड पानी भीतर दबलबा। नदिया के पानी तारजाली लगे गिट्टी बालुआ के बनेलक किनार भत्कना लगलबा। किनार भत्कलबा वहां मुरलक रूख ढल्ला लगलबा। बालुआ के बनलक किनार भत्कलबा कर्णाली पानी भैरव नाथ वन टीकापुर पार्क हुटी दक्षिण मरलक टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8 के बस्ती में पैठना टीकापुर के पार्क के इंचार्ज अर्जुन बहादुर कुंवर बोटेलोट लद्या के किनार भेटलक स्थानीय 74 वर्ष के सोनलाल थारू 10 वर्ष से आख 300 मीटर पूर्व पोहरलक कर्णाली एहेचो लौटेलक सरकारी काम ढिला हुईलक एहेचो बगेना अलग अलग बोटिलोट कर्णाली लदिया पूर्व पोहर ढुंगा गिट्टी थुपलक टापू बंटी हल गत वर्ष नई हटाई पर्ना कैके नगरपालिका जिला प्रशासन प्रदेश संघीय प्रतिनिधि स्थलगत भ्रमण करेलक जोखिमयुक्त ठाव में बोल्डर खसल्ला हुईलक टीकापुर नगरपालिका के नगर प्रहरी प्रमुख पहल बहादुर शाह बोटिलोट। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार में कर्णाली लदिया के जलस्तर 6.84 मीटर पुगलबा। विगत के वर्ष के तथ्यांक हेरा से 9.5 मीटरसम हरेक वर्ष पुग्ल कलबा। कबू काल खतरा के तह 10.8 मीटर पार करना कर दीवा। तत्काल व्यवस्था नई कलक 8 मीटर पुग्ल से फे पानी के फे ठरबण्ड भट्केन सेक्ना टीकापुर नगर प्रहरीके प्रमुख पल बहादुर शाहके काहीवा प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी स्थानीय तह प्रतिनिधि सभाके सदस्य रानी जमरा अधिकारी कोन जोखिमके बारेमा अग्रिम जानकारी करेलक तर रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाके लापरवाहीके कारण कायम नहुलक जोखिम निमित्त अलगलग यमहजिममा आयोजना लेहपना कुछ दिन आघनै बुटिलोबाट परियोजनाके प्रमुख प्रेमराज घिमिरे सूचना अधिकारी रामकृष्ण घोरा सैनीसँग फोन सम्पर्क गर्न दुनु जहान फोन उठाइने रहे। टीकापुर नगरपालिकाके प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सुमन धितार रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना 2083 चैतमा लगलक ठेक्का ठेकेदार काम नै कलक कि कारण रोकलक अरू ठेक्का खोलक तर उहाँ लम्की चुहा मसे लानपना बोल्डर लन्ना नै पलक काम आघ नै बढेलक जानकारी पलक बुटिलोबाट। खबरमा एकरी विश्राम विश्वास फेर एबीसी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्याहन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
3: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर। भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई भेष हुनु मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसीजी र ल्याब टेस्ट को सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम को नजिकै टीकापुर। टाढा का बिरामी नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारी को लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-777। समय बिहान 10 बजे देखि दिउँसो 3 बजे सम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पाछा फेरसे स्वागतवा। भतनी नगरपालिकामा विद्यालयका रिसाबारी प्रबन्धन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुलबा बाल मैत्री र पोषण मैत्री पालिका बलिना सखेना पुगलक उद्देश्य कार्यक्रम आयोजना गरिगिल्बा ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालकी आर्थिक सहयोगमा विकासका लागि युवा एकबद्धता याड धनगढ़ी कैलाली के भजनी टीकापुर घोडाघोडी गौरी गंगा नगरपालिका हो कैलाली गाउँपालिकामा बाल समितिका लागि एकीकृत विकास हातेमालो परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालनमा कार्यक्रममा भतनी नगरपालिका के नगर प्रमुख केवल चौधरी विद्यालय के करिसाबारी कार्यक्रम विद्यार्थी हुकनके सिकाई संघ आय अर्जनमा फिस सहयोग पुग्न हुलक विद्यार्थी हुक्र कुलतमा लग्न नै पहिलक बुटिलोबाट उहाँके बाल मैत्री र पोषण मैत्री पालिका निर्माण केलाक पालिका अग्रसर होस्याकल एहेकलाक आवश्यक पहल पालिका कतिर हल बुटिलोबाट भदनी नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज भट्ट पालिका पोषण मैत्री बडनाय विद्यालयमा करिसाबारी दिवा खाजा संघ ज्योति जैना प्रयास धीरसे बढ़ेर सेक्ना उहे कल्चर ट्रान्सफर मिशन म सकेना पुग्लक बोटेलोबाट शिक्षक ललिता मल्ल करेसा बारी बनेना छोट क्षेत्रफलके जग्गामा फे कर सेक्ना हुलक विद्यालयकी आजर पाजर केरा मेवा लगायतके फलफूल लगेना फे पोषणमा सहयोग पुग्ना बोटेलोबाटी अभिभावक भागरथी विकट विद्यालयके कार्यक्रममा लागू गर्के आवश्यक पलक बेला अभिभावक कुक्र फे सघाई पर्ना वा आफ्नो सकेना तयार रलक बोटेलोबाटी मोनेल मावी के कृषि विद्यार्थी हिमांशु चौधरी आफ्नो विद्यालयमा तरकारी खेती कतिरहरूले चाहिँ फेरि एकर बजारीकरणमा पालिका सघाई पर्ना बोटेलोबाटी कार्यक्रममा मोनेल मावी के प्रधानाध्यापक विद्याप्रसाद भट्ट वडा नम्बर 1 के वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश डंगौरा थारू महिला बालबालिका शाखा प्रमुख रिजु चुकाहा शिक्षा शाखाकै प्रतिनिधि देवराज अवस्थी विद्यालयकै व्यवस्थापन समिति प्रतिनिधि विद्यालय अभिभावक संघकै प्रतिनिधि शिक्षक अभिभावक विद्यार्थीहरूकी सहभागिता रह डिगो विकास समाज भजनीकै मार्केट कोअर्डिनेटर विनोद साहो या धनगढ़ीकै रतनलाल चौधरी सहजीकरण कर्ल रही ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालकै साझेदारीतामा विकासका लागि युवा एकबद्धता या धनगढ़ीकै आयोजनामा कार्यक्रम हुलबा कार्यक्रम मोन्याल माविकै अध्यक्ष सुरेन्द्र जैसी अध्यक्षतामा रहे। नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाक र वाइलेट खोल्न तथा प्रयोगकर्ता के विवरण अध्याधिक गर्न प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्था समिति भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका 2082 15 संशोधन कलबाट भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार जारी कलक परिपत्र अनुसार संशोधित व्यवस्था बमोजिम अब भुक्तानी सेवा प्रदायकै अनुमति प्राप्त संस्था नेपाली नागरिकीय हकमा राष्ट्रिय परिचय पत्रकै विद्युतीय अभिलेख अनुसारकै विवरण

ए समाचार संग खोज खबर वाले जिन्हें से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो आज हरी सयनी एकादशी तुलसी लगैना दिन कर्णाली नदिया कटान्तर भन्दा भटकेटी टीकापुर के दक्षिण क्षेत्र जोखिम भतनी नगरपालिका में विद्यालय करेसाबारी प्रबंधन सम्बन्धी अभिमुखीकरण उवासकी मौसम एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा के सम्भावना लिटा बक्ला खोज खबर अत्र प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद लिटी बक्ला खोज खबर से महिषा चौधरी विदाई टू एक पाछ 12 बजे की खोज खबर सुन सिक्वी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्टी रवि राम राम।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दंत रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 रक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-38 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: नरेश दादू मैं तो अपना फोन आई की दौड़ती आ गई नो है भौजी कहाँ बाती
1: ओ गोन्दे में सुतल बाती बाबू चोली न भरिए
0: भौजी कहाँ से काटल अपना हन हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने लो बाती तो तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना हन
2: यहाँ पोली ऊपर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटाई पर मैं खुआ पूना हो
0: ना ते भौजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा हना जिन से रेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे थे था लगल के एकरो मोटरसाइकिल बाक लछे उहे में बैठा के भौजी है ना सरपरन सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ई बेला त खैना जात थे दिहे न्यू इट ना स्वयंसेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर रो निकट सम बेरमेन कुछ से खवाईली हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकना सपवा कटलक अंगन स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल से फफर करा दी बेरमिया अक्टेले से झन समस्या होना हुई कोशित बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खब बनना फिर कठा असी कर से रक्त संचार में समस्या हुई सीठा जिहिले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सीठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक्ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: के तपाई चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ?
4: अब टिकापुरमा रहेको मनिष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
5: यही साउन 9 गते शनिबारका दिन
4: मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
3: मनिष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने
5: डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते शनिबार
3: साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
4: स्थान मनिष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 98600-71024 र 98046-77417।

0: कस्तो गनाएको, यिनका सन्तानले टोयलेट गनाएरै मार्ने भए।
1: फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो, के गर्ने होला, घरमा पुरुष पनि छैनन्।
2: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको, कोही चाहिँदैन, फोन गरेपछि तुरन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा छँदैछ नि।
0: कता छ त त्यो?
2: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न, तुरन्त आइहाल्छ नि।
0: फोन नम्बर कति हो भाइ?
2: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97620203000 हो, अर्को पनि छ 98 65 69 20 26।
3: तपाईँको पनि टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सप्पी, राजापुर, गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की, गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला। सञ्चालक शेरबहादुर थारू, सम्पर्क नम्बर 97620203000 र 98 656 92 026।
4: नेपालमा पाजेना बिखा सापनको विषयमा सुन। एक ठोर गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घर भित्र पैठ सेक्ठ, यी कटला से निबठाई फे स्याकट, तर कटलक पाछ डेही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्वा हुई सेक्ठ। और रठ डोम जोन बड़ा रिसाह मेरिक रठ, निकर फाट फुले थ डोम साप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना, ओ खास कैख संजा बिहान देख पर्छ, निकर कटला से फे लक्वा हुई सेक्ठ। ओ और रठ कैरी जाटक साप, निकर कटला कलसे कटलक भाग सुई था, वो बड़ा कर्र से बठे था, रगत से पाटी होकर रगत बहना हुई से था। उसने का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने फुनकारना बाधे सा, ई सांप दसलक बेरमेन कम केल पा दे था, तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा।
5: बर्खा छ्याएको अनाज बिग्रिना समयमा सापनका कटाई अथवा दसैँका घटना ढिउर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनका बछारा नाश विदेश सापनका दसैँका घटना ढिउर बिना कर्लक पादै
6: झुर जसिन सापनका दसाई हानिकारक नि रह। उहो फे यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर।
7: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग, ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग, आधिकारिक वेबपेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्छा।
8: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: मुका पिएर कभी पेन्सिल कबू झलै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा के ओस्टा बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेन्सिल हेरा कई ठो कबू झोलै फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीख ठो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठिनी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
1: चंडी माई स्वास्थ्य क्लिनिक टीकापुर में
3: यही साउन 16 गते तेसरो शनिवार का दिन
1: कोहलपुर मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ मानसिक लागू औषध तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन बेलबासे MBBS MD बिरामी जांच गर्न चंडी माई स्वास्थ्य क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ
4: दिने सेवाहरू बेला बेलामा मुटु ढुकढुक हुने हात खुट्टा काप्ने या चिसो हुने धेरै पसिना आउने मनमा छटपटी हुने ज्यादै झस्कने तर्सने या डराउने भएमा
1: असामान्य रूपमा धेरै लामो समयसम्म टाउको दुखी रहेमा
4: बढी बिसाउने झिजो मान्ने झर्कने जिउ दुख्ने दुब्लाउने निन्द्रा नलाग्ने भोक नलाग्ने भएमा
1: काम काजमा मन नलाग्ने त्यसै दिक्क मानेर बस्ने भएमा
4: असामान्य रूपमा एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने भएमा
1: धेरै रक्सी खाने वा लागू पदार्थको सेवन गर्ने भएमा
4: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेमा
1: याद गर्नुहोस् है
4: यदि यस्ता लक्षणहरू मध्ये कुनै एक लक्षण मात्र पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार देखा परेमा यसले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोग लागेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ
1: त्यसैले सम्बन्धित बिरामीहरूले नाम दर्ता गराई ढुक्क हुनुहोस्
3: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार
1: स्थान चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक सम्पर्क मोबाइल नम्बर 091-560-856 र 98-580-29-700

0: डेलिभरी का लागि
1: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा सितर
0: टिकापुर कैलाली
2: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106672 स्वास्थ्य का लागि पानी
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
1: अरे का करू री बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना, अट्टा सुगुर बनेला बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे वस्त बनी हो ना, उट्टा फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
3: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
3: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
4: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
3: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
4: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
4: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
4: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
3: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
4: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
3: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
4: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
3: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
4: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
3: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
4: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 0915600088 र 561600088।
3: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।

0: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है, मरम फेंकरा जाए। एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
1: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
2: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में। उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू,
3: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा, जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया,
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा,
3: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा,
2: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा,
3: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
2: दन्त रोग सेवा,
3: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा,
2: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
4: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार,
2: र सिटी स्कैन सेवा,
3: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू, एसडीयू, सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा,
2: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलोजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पारासिटोलॉजी, सेरोलॉजी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल वीडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पताल का अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
3: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा,
2: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
3: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लीगल सेवा,
2: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
3: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
2: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
3: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: कस्तो जन्माएको, यिनका सन्तानले टोइलेट गनाएरै मार्ने भए।
1: फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो, के गर्ने होला, घरमा पुरुष पनि छैनन्।
2: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको, कोही चाहिँदैन, फोन गरेपछि तुरन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा छँदैछ नि।
0: कता छ त त्यो?
2: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न, तुरन्त आइहाल्छ नि।
0: फोन नम्बर कति हो भाइ?
2: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97620203000 हो, अर्को पनि छ 98 65 69 20 26।
3: तपाईँको पनि टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सप्ती, राजापुर, गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की, गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला। सञ्चालक शेरबहादुर थारू, सम्पर्क नम्बर 97620203000 र 98 656 92 026।
4: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो नी करत का कहीं हो का।
4: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेल बाट, आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी में कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
5: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808

0: बुका पिएर कभी पेन्सिल लिएर कबू झन फटाका आज का हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिखे का हुई थी जलम भर भर बराइटी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेन्सिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेन्सिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
4: शिविर संचालन हुने स्थान
3: नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय ब्लक नम्बर 9 साउन 9 र 10 गते
4: कर्णाली मावि टिकापुर साउन 11 र 12 गते
3: सरस्वती मावि बनगाउँ साउन 13 र 14 गते।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 98 6 56 92 0 26

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मैं सीता चौधरी के राम राम। अपने उखरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapureFM.org मोहलाव सम्रपात्र और नेपाली पात्र मफी सुन्टी हलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। शिक्षालय के समिना गृहमला प्रवाही, डेंगू संक्रमण घटल तर खतरा टर नहीं हो, डाक्टर किसी अस्पताल भर्ना करगिल, भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा राजीनामा,

0: पूरा खबर टीकापुर प्राविधिक शिक्षालय के चमना गृह मंत्रालय के आपूर्ति कर्ना खाद्य पदार्थ में गंभीर लापरवाही कलक भेटकिल्वा शिक्षालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को खाना व खाजा खैना चमेना गृह के संचालक शमशेर बहादुर साउत सरल गरल म्यात नागल खैना चीस खैना करलक भेटगिर्वा शिक्षालय के विद्यार्थी हेलो सरकार में गुनासो कर पाछ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय धनगढ़ी के खाद्य अनुसंधान अधिकृत हुक्र शुक्रवार निरीक्षण कलक संचालक साउद गंभीर लापरवाही कर उपभोक्ता स्वास्थ्य में खेलवाड़ कलक भेटगिर्वा शिक्षालय के भन्सामरलक अचार बेसन दाल गुन्द्रुक ढुसी लगलक मुसह खैना म्यात नहलक बिस्कुट सरसफाई के अवस्था हेलक भान्सा ढेर फोहर रहलक भेटगिल खाद्य अधिकृत आरती भट्ट जानकारी दिलवा टी चमिना गृह संचालन के आनंद के लापरवाही निकलना सर्तव शिक्षालय के रोहबर धरके निर्देशन दिलवा ट 2083 असार मसान्त में ठेक्का ओर तरह व्यक्ति छनौट नई हुआ कुछ दिन के लाख शिक्षालय के निगरानी खाद्य स्वच्छता कायम करके खाना खाद्य खोईना शिक्षालय के निमित्त प्रमुख विकास राणा प्रतिबद्धता जनवा चमिना गृह संचालन के गंभीर लापरवाही करला सीफे को कार्यवाही नकर के पहले चौ निर्देशन देखे छोड़ला गरल बिग्रल अवस्था में खाद्य सामग्री फिर नष्ट करके खालो में गर्लवाट चमिना गृह संचालन फिर ढुसी पलक म्याट नहलक सामग्री छेगृह खोइना कटी खालो में नईपुर के फिरता मंगना लगलवाट नेपालमा डेंगू संक्रमण दर घटी गल्वा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा के अन्तर्गत किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा के प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाल नेपालमा गत वर्ष से डेंगू संक्रमण दरमा कमी हुटी गलत जानकारी दिलबाट उहाँके काई विगत वर्षमा 50-60 हजार के हाराहारीमा डेंगू संक्रमण हुँदैसके गत वर्ष से संक्रमण दर घटी गेलवा गत वर्ष 8,900 डेंगू संक्रमण हुला उहाँके अनुसार पुसिंहेर 71 जिल्लामा से 1500 हाराहारीमा डेंगू संक्रमण के बिरामी हुक्र प्रतिवेदन हुलबाट शहरी बस्ती बढ़ी हुलक जिल्लामा बढ़ी संक्रमण दर देखलक डेगिल उहाँ के कहबा संक्रमण दर घटी गए उहाँ के जोखिम फे कायम रलक सचेत रहना उहाँ आग्रह कलबाट उहाँ के अनुसार वर्ष या म डेंगू जोखिम उच्च रलक उलक समुदाय स्तर में सरसफाई अभियान संचालन करके लामखुट्टे प्रजनन स्तर नष्ट करना सकुझान आग्रह कलबाट लामखुट्टे वृद्धि विकास रोकना फूल के गमला टायर ड्रोम बाल्टीन तथा खुला भाड़ा पानी जमा नई दिन पानी जमना ठाव निमित सफा करना उहाँ के सुझाव लामखुट्टी के टोकाई बस बस्ना झूल प्रयोग करना शरीर ढंगना लुगा लगाइना घर के झ्याल ढोका जाली ढहना तर आवश्यक पूरै धूप वा लामखुट्टे भगैना सामग्री प्रयोग करना उहाँ के आग्रह कलबाट उहाँ के अनुसार डेंगू एडिस प्रजाति के लामखुट्टी के टोकाई मसे सरलाइट ए प्रजाति के लामखुट्टे सफा पानी में प्रजन करलसंग साझा बिहान के दिन के समय में बढ़ी सक्रिय हुना हुलक ये मसे टोकाई में बस्ना उहाँ के आग्रह कलबाट खोज खबर मैं विश्राम विश्राम पास फिर से विश्व त्रिवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू अकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्याहन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप समारोह सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा बाह्रको पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर कैलाली।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर कैलाली।
5: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग सम्बन्धी सेवा फैले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा। बर्दिया कर्णाली नदीमकटा नियन्त्रण बढ़िया रोकथाम व्यवस्थापनकै काम 5 वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य हुलासेफे 12 वर्ष भित्र बिच्याकल तर सम्पन्न हुइस्याकल नै हो। साबिक कर्णाली नदिया नियन्त्रण व्यवस्थापन आयोजना राजापुर हाल सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न गर्न पर्ना 71 किलोमिटर तटबन्धन मध्ये 12 वर्षमा करिब 22 किलोमिटर निर्माण हुँदा 2071 फागुन 15 तत्कालीन सिंचाई मन्त्री एमपी साउद आयोजनाकै उद्घाटन कलर है। गुरू योजनाकै अनुसार कर्णाली 1 एकर भंगालो गेरुवा लदेमा तटबन्ध पूर्ण रूपमा सम्पन्न करकला 12,80,74,00,00 रूपियाँ बजेट स्वीकृत हुँदा कर्णाली लदिया नियन्त्रण आयोजना अन्तर्गत 5 वर्षभित्र 71 किमी तटबन्ध निर्माण सम्पन्न करपना योजना सुस्त गतिले काम हुइटिरहँदा हालसम्म गरिब 25% तटबन्धकै काम हुइल्बा 2083 असारसम्म गरिब 22 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण हुइलक आयोजना जनेर वा वर्षेनी यमसे भेकी खेती योग्य जमीन कटान मसी जोगैना बढ़िया मसी बिना डुबान रोक्न सरकारकै तटबन्ध निर्माण कलाक आयोजनाकै कार्यालय स्थापना गर्न रही लद्या नियन्त्रण काम ढिला सुस्ती हुलक राजापुर नगरपालिका व गेरुवा गाउँपालिका कटान हो। डुबान क्षेत्र उच्च जोखिममा रहलबा राजापुर चारकी किसान हरिप्रसाद थारू तटबन्धकै काम पूरा नै हुलक बर्खामा ढुक्क बिना अवस्था नै रहलक बुटेलो बाट। धनगढ़ीमा बिहिबार से 24 अनशनमा रलक प्रधानाध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीकै स्वास्थ्यमा समस्या देखा परलबा छ। अस्पताल भर्ना कलबाट धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 1 स्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा अनशन बैठक डाक्टर केसीकै स्वास्थ्यमा समस्या हुर्पा छ। शनिबार बिहानकै 11 बजे अस्पताल भर्ना करगिलबा स्वास्थ्य परीक्षणकै क्रममा डाक्टर केसीकै रक्तचाप 110.90 हो। रगतमा सुगरकै मात्रा 50 मापन हुलक। चिकित्सक बुटिलोबाट सुगरकै मात्रा अत्यन्त न्यून रलक। स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बन्टी गलक। कति चिकित्सक तत्काल सेती प्रादेशिक अस्पताल के आयुषीमा भर्ना करके उपचार गर्न सुझाव दिला रहे। चिकित्सक हुकनके सुझाव अनुसार वहाँ धनगढ़ी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल के एक नम्बर आईसीयू के सैमा नम्बर दुई वा भर्ना कर्गी वा बिहीबार से पाँच बुधे माघ धरके सत्याग्रहमा बैठक डाक्टर केसी के स्वास्थ्य निरन्तर कमजोर बन्टी गलत चिकित्सा के निगरानीमा धरना सिटी प्रादेशिक अस्पताल लगिल्वा यहाँ डाक्टर केसी के अनशन गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय प्रभावित हुनाकटी विरोध डोट शुरू हुल्वा गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समिति शनिबार बिहानके धनगढ़ीमा डाक्टर केसी विरूद्ध प्रदर्शन कलबाट डाक्टर केसी आफन पाँच बुधे मागसंघ सहित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माफी उहाँके मतिया आरोपनके स्वार्थ पूर्ति गर्न हतार हतार जबरजस्ती एन थुपलक दावी कलबाट केसी मेडिकल विश्वविद्यालय केला त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्था बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपयुक्त हुन धारणा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक कलबाट केसी सरकारकी नियुक्त कला उपकुलपति व रजिस्ट्रार के समेत राजीनामा मागलक एमबीबीएस अध्यापक के मुहमा गेटाकी विषय उठेन कलकटी सरकारवाला स्थानीय आपत्ति जनेलबाट खुशखबरमा फेर विश्राम विश्राम पाछ फेर विष्णुतिर विश्वामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो दिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनाई लाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
8: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
11: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
10: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
11: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
10: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
11: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
10: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
11: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
10: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
11: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
10: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
10: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772
12: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
13: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: विश्राम पाछ फेर स्वागत बा परीक्षा के प्रश्न पत्र बाहिरक विषयले के देशभर विद्यार्थी के विरोध प्रदर्शन सर्कल पाछ भारतकी केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान पद्मसे राजीनामा दिलाबाट शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधनकर्ती उहाँके आफ्नो राजीनामा पत्र बुझिलबाट उइबा तथा विद्यार्थीकी नेतृत्वमर्लक ककरोच जनता पार्टी सीजेपी थियोडोसिन विद्यार्थी संगठन विपक्षीय दलकी लगातारकी विरोध प्रदर्शन पाछ उहाँके राजीनामा आइलगा आन्दोलनरत पक्षकीय मन्त्री प्रधान केन्द्रीय मन्त्री परिषदमा से हटाइपूर्ण मुख्य माग धरतीबाट देशकी युवा तथा विद्यार्थीकी भावना नियोजित अपेक्षाकी सम्मान कति राजीनामा देलक प्रधान उल्लेख गर्लक टाइम्स अफ इण्डिया खबर लेखबाट जन्तर मन्तर लगाए देशकी धेरैसिन भागमा भुटिरहेको विद्यार्थी आन्दोलनकै कारण शिथिल परिस्थिति ध्यानमा धरती विद्यार्थीकी भविष्यका निउल्छनमा नै परोस्कै कि उहाँको अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गर्नका के उहाँ निर्णय लेलक उहाँ राजीनामा उल्लेख भए। यस समाचारसँग खोज खबर वरेल दिनासे पहिले खबरको मुख्य मुख्य शीर्षक फेर सेक्छु। इच्छालेखि चमिनागिरीमा लापरवाही, डेंगू संक्रमण घटल तर खतरा टर्दै हो, डाक्टर किसिम अस्पताल भर्ना करगिल, भारतीय शिक्षा मन्त्री धमेन्द्र प्रधानद्वारा राजीनामा, दिता बुक्ला खोज खबर तर प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टा यहाँ धन्यवाद दिए। अब खोज खबर सेमै सीता चौधरी विदा हिटो एक पास छ बजे खोज खबर सुन्न सिक्दी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुन्दी रवि राम राम।

0: नरेश दादू मैं तो अपना फलाई की डर से आ गई नो है भौजी कहाँ बाटी
1: ओ गोन्दे में सुतल बाटी बाबू चोली न भरिए
0: भौजी कहाँ से काटे लपना अरे खादर पावे तो सफा सुखर बने लो बाटी तो तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना
2: यहाँ पोली भूख कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा देर में को आप ना हो
0: ना ते भौजी हमरा बाटी अपना ना कुछ नहीं हुई दिन ग्वारा हना दिन चले दी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था नगर के को मोटरसाइकिल बाकल अच्छी उन्हें मैं बैठा कर भौजी है ना सरपर सा उपचार केंद्र ले दी ना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात फिर दिए न्यू इट ना स्वयंसेवी का दीदी
0: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम जनमेन कुछ से खवाई ली हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएला सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तंग कस गेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल से फफर करा दी बेरम ने अक्टेले से झन समस्या बिना बिल को से बेरम यहां शांत रह सहयोग कर पठा क्यों मने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबरना फिर कठा असी कर्ण से रक्त संसार में समस्या हुई सकता जेही ले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट का फाक को नावस्था थे आई शिक्षा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जै बो? पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेल बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कमर घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संग

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
1: साउन 16 गते तेस्रो शनिवार का दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 73 77 72।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिद्ध जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिद्धा सेकल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ र घूम जाए तो
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषत हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

0: कबू का पिए रही था कबू पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस तबातीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मर अलग रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी

त्यो भन्दा नीच छौ निष्ठा स्वान छी गरी सुन्दछ दही दोधार का चिउरा सत्ता का तिमी शासक बसु आसन।

बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: दाई नाच बा कहाँ जाई लग्दो त
1: हिसाब लाटा चर्पी जाई टुका
0: ए रुको नाट कोसिन हो कला छे मै टर्च लाइट लट्ठी दिने तु लेख जाओ
1: काचे चुनु लट्ठी वो टर्च लाइट
0: का करो भाई दाई राटिक बाला बाहे निकल पड़ला छे वा टॉयलेट जाई पड़ला छे जहिया फे टर्च लाइट बार ख को लम्बा लट्ठी देख के ना जाई पड़ता का करा की बरखा छाक बा सांप रहसे टर्च को अजराले सापन दिया खसे था वो लट्ठी ठैक ठैक आओ सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हमन ना स्कूली मैडम सर नुकर साफ नुकर सितना ठाउं सी न्यांग पड़ला सी वो काम कर पड़ला सी जहिया फेठा फोसियार भी पता गई कर सीखे लबाट का आम छेटवा दिवा धपा अथवा झांगा चलक ठाउं में न्यांग पड़ला सी लम्बा लट्ठी देख ठैक ठैक बजेटी न्यांग पता गई कर कलबाट
2: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग आई सकता विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकते था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश